0: मै रेडियो चाकिसा निनमाला
1: ज्यू बा
2: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज
3: छेदनीगु नीति ध्यान बि मागु खे येला महानगरपालिका या सूचना
4: नक्सा पास निगु चरनेजी नापा डीपीसी तक जुइसा नक्सा पास जु कठ डीपीसी याना तगु जुसा जक वये लिपा डीपीसी चुए या नक्सा पास जुइ
3: डीपीसी नक्सा स्वीकृत अस्थाई नक्सा पास जुगु दछि दुने डीपीसी यामा मजुसा खुला दुने न्यागु प्रतिशत दस्तुर पुला म्या थप याफै थुकथ ज्यापु अंकाली हन निदय नीति म्या तनिगु ज्याजुइ डीपीसी शिविर छुए स्थायी नक्सा पास जुगु म्याद निद तक जुइ निदल दुने पु मवासा म्याद फिन ह म्या तनिगु नीति निवेदन बीमा थुकथ निवेदन बिलकी मेगु निदय नीति म्याद तनि ज्याजुइ
4: त खुशिया मापदण्ड बालक ध्यान बिया छेदनीमा ठुक कठे छेद देखिगु नाप नाप टस्क तजा मजुई कठ जोखी मजुईको सीमा नपीमा
0: तालमै रेडो देगुला रेडवा खने छित माउजुको कनि चिन छेदन माउ जखिले दुहे खनिन दत्का नु चिन उने महानगरपालिका नक्सा पास या त
5: हाम्रो पन हाम्रो गौरव
2: नेपाली रेडियो नेपाली आवाज
5: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज

0: राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउनुहोस् मात्र रु 999 मा र 175 प्लस च्यानल सहित को फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहित को अन्य पैक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।
1: हाम्रो पन, हाम्रो गौरव,
2: नेपाली रेडियो, नेपाली आवाज,
1: रेडियो सगरमाथा FM 102.4 MHz।

0: मै रेडियो च्याकिसा नियन माला
1: ज्यू बा
2: रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्ज
3: छेदनिगु नीति ध्यान बि मागुखे येला महानगरपालिका या सुचा
4: नक्सा पास निगु चरनेजी नापा डीपीसी तक जुइसा नक्सा पास जु कठ डीपीसी याना तगु जुसा जक वये लिपा डीपीसी चुए या नक्सा पास जुइ
3: डीपीसी नक्सा स्वीकृत अस्थायी नक्सा पास जुगु दछि दुने डीपीसी यामा मजुसा खुला दुने न्यागु प्रतिशत दस्तुर पुला म्या थप याफै थुका थ ज्यापु अंकाली हन निदय नीति म्या तनिगु ज्याजुइ डीपीसी शिविर छुए स्थायी नक्सा पास जुगु म्याद निद तक जुइ निदल दुने पु मवासा म्याद फिन ह म्या तनिगु नीति निवेदन बीमा थुका थ निवेदन बिलकी मेगु निदय नीति म्याद तनि ज्याजुइ
4: ध खुशिया मापदण्ड बालक ध्यान बिया छेदनीमा ठोक कठे छेद देखिगु नाप नाप टस्क तजा मजुई कठ जोकी मजुईको सीमा नपीमा
0: तालमै रेडो देगुला रेडवा खनी छित माउजुको कनि चिन छेदन माउ जखिले दुहे खनिन दत्का नु चिन उने महानगरपालिका नक्सा पास या त
5: इन्जिनियर म्याडम याद रहोस् मेरो यो घरमा नेपाल टपको पीपीआर पाइप मात्र प्रयोग होस्
6: किन राजेश जी
5: किनकि यो सजिलैसँग जडान गर्न सकिन्छ र यसको जोड यस्तो

पाए अनि कोलाई पाछु ने कान छिनि कोलाई माछु ने अखर सुसाई सुकानी कान छिरु खाम साई सुकति गम कानी ए सुक्ति लयगम थङ पाए कान छि सञ्चलो लातीको ए नम्दोलो लातीको कान छि ब्रौती दैवं ज्याबा दस्त हङ्गोर साकाए कान छि पञ्चारी नङ्गनाम साकाए लङ्का त्यौ तेरो वर ठङ कान छि लाभ गोइते साई साई थौ अस्मि।

राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउनुहोस् मात्र रु 999 मा र 175 प्लस च्यानल सहितको फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इन्टरनेट ओन्ली र टीवी सहितको अन्य प्याक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: नबिल ब्याङ्क सँगै अघि।
1: राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पाउंड होस मात्र रु 999 मा र 175 प्लस चैनल सहित को फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहित को अन्य पैक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: छुए स्थायी नक्सा पा सुगु म्याद निदन्तकजुई निदलदुने पु मवासा म्याद फिन ह म्याद तनिगु नीति निवेदन बीमा थुकथ निवेदन बिलकी मेगु निदय नीति म्याद तनिजाजुई
1: ठ खुशिया मापदण्ड बालक ध्यान बिया छेदनीमा ठोकठ हे छेद देखिगु नाप्नाप टस्क तजा मजुई कठ जोखिम मजुईको सीमा नपिमा
0: तालमै रेडो देगुला रेडवा खने छित माउजुको कनि चिन छेदन माउ जखिले दुहे खनियन दत्का नु चिन उनी महानगरपालिका नक्सा पास या त

नगरा एकाए होती को कान छी नगर तो काय होती को सांचा दो बेसुख चंग्या कान छी नम्दा दो बेसुख चंग्या तस्ता हंगनो साकाए कान छी पञ्चाधिङ साइसाकाई भ्राउती एवं जी नै कान छी सञ्चा गुबालम भ्राउती एवं जी नै कान छी नम्दा गुबालम निको लय रद्दाने कान छी निकोलय पल्दाने इन्द्रको बङ्जुवङ कान छी हिङ्तीलय कन्छाकै अदस्तको बङ्जुवङ कान छी नोतीलय गम्साकै साइती गम्जिन कान छी सञ्चा दोबेलम ए नोतीलय गम्जिन कान छी नम्दा दोबेलम